Imagínate, oh, para ti. Llevo

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: Even Mesada.
1: Thank you.

Очень.

خوشی.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पॉल्यूशन से बेसियत।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, क्या देखने गए कि बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी। अगर एक एक स्वमान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो चलो तो स्वमान कहती जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। स्वमान की लिस्ट रखी है लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है। वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी, उसको यूज करो क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो इस स्वमान को आपके कम कर सके और किसी को भी इतने स्वमानों की माला नहीं मिली। तो बाप दादा ने देखा सत्ययुग में तो राजभाग मिलेगा स्वमानों की माला संगम युग की देन। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चों के स्वमान के स्थिति से देखते हैं। वाह बच्चा वाह, तो स्वमान के मैं कौन, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान बुद्धि में रखा उस स्वमान खजाना है ना, इसको यूज किया क्योंकि खजाना भरने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन चाहे किसके पास स्वमान की स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी। जहां स्वमान होगा वहां देवान खत्म हो जाता। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे स्वमान का खजाना है ऐसे एक एक शक्ति एक एक गुण इस्तेमाल करो, उसको कार्य में लगाओ। तो ये जो प्रॉब्लम होती है माया आ गई, माया आ नहीं जाती लेकिन माया ने बाप को सुना कि मेरे को आवाज कर दे तब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती। कोई भी हल्का संकल्प करते हैं माना माया को आवाज किया, शक्तियों को छोड़ता है तब तो माया को आह्वान किया, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती। तो बलवान कौन, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती। तो माया बलवान हुई यहाँ आप, तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है। एक एक धुन दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो तीन रूपों से राज्य होना स्वराज अधिकारी।

0: अवश्य में विश्वराज अधिकारी और द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य पूजन के अधिकारी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: लाभ उठावे जो भी करूं।

0: कर रहा हूँ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
2: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी पाप दादा भी देखेंगे एक मास के रिजल्ट में सिर्फ यहाँ ये लिखे कि इतने परसेंट सेवा की, 40%, 80%, 10%, 20%, 100% लिखे, बड़ा लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखे। फिर बाप दादा इनाम देंगे फर्स्ट नंबर वाले को, लेकिन बैलेंस स्व और सेवा का बैलेंस, संतुष्टता प्रसन्नता का बैलेंस, ठीक है? सब रिजल्ट लिखेंगे, सिर्फ परसेंटेज लिखना। बेटी दादी, योग युक्त दादी, लंबा नहीं लिखना, बस परसेंटेज, क्यों टाइम नहीं होता है पढ़ने का इतना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जाएंगे तो
2: और कितना सामान मिलता है अगर मधुबन वाला कहाँ भी जाता है तो किस नजर से सभी देखते हैं। मधुबन वाला है मधुबन वाला है तो इतना अपना स्वमान सदा इमर्ज रखो मर्ज नहीं इमर्ज।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

twisted.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो होना ही है, पहले से पता है ये होना है। लेकिन बाप समान रिश्ता बनना ही है, समझा? करना है ना, करना है, करना है। कर सकेंगे, एक वर्ष में तैयार हो जाएंगे, क्या आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे। आपकी संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में करो तो इवॉलिटी, चलो 6 मास में नहीं तो 1 वर्ष तो है। हलचल में हिलना नहीं, अचल लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है। कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं ब्रह्मांड हिलावे, ब्रह्मांड और रुकावट बन के सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे, थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: यज्ञ में हर एक का पाठ अपना अपना आवश्यक है। कोई भी एक्टर निमित्त सेवादारी अगर मिस होते हैं तो ऐसे नहीं मालूम नहीं पड़ता है। हर एक का पाठ अपना अपना महत्व है। कोई का भी पाठ अगर मिस हो जाता है तो फर्क पड़ता है। ये बाप का वरदान एक एक कामन पाठ दारी को भी जैसे बनाने वाले हैं वाला नहीं हो तो काम नहीं चले। सफाई वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले। और क्लास कराने वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले। हर एक एक्टर को ड्रामा अनुसार जो पार्ट मिला हुआ है उसको समझना चाहिए कि मैं भी विशेष निमित्त हूं। ड्रामा ने हर एक को चाहे छोटा सा कार्य लेकिन वो भी जरूरी है। पांच अंगुलियां है, एक अंगुली भी मिस हो जाए तो फर्क पड़ेगा। तो यज्ञ की यही विशेषता है, जो भी जिसको पाठ मिला है ना वो बहुत बहुत बहुत जरूरी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजा पर नहीं बोलो, सीट को नहीं छोड़ो, बिना सीट के कोई आर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कितना कुछ करते अपना हक लेने के लिए, कितना करते अपना हक कोई छोड़े नहीं चाहता। आप अपना परमात्म हक, मैं कौन, हर समय जो काम करते हो तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। ये काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा? आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखो? हर काम के टाइम जो भी अपने स्वमान की लिस्ट है, भले बिना बिना टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय ये काम करना है, उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है? मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है? ये मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आते हैं ना, आते हैं, माताओं को आते हैं, माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है, उस समय कौन सा स्वमान अपने बुद्धि में इमर्ज रखना है? बहुत माला है स्वमान की, इतनी बड़ी माला है जो स्वमान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप अपने विशेषताओं को जानते

भ्रमण जीवन में आने के बाद पाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि पाप का बनने से सोला नहीं है, सोला मा

watch this scene.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं, आज भी कर रही हो यही रमण, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमण, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, सिक्या दातापन सिक्या भी देते, लेकिन सिक्या के साथ प्यार भी दिल में रखते, और प्यार की निशानी है कोई पांव का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है हर आत्मा के वृत्त, कैसी भी है, कोई भी है, लेकिन अपने शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना, घृणा भाव नहीं आवे, ये तो बदलने वाले नहीं, ये तो है ही ऐसे, नहीं सुनाया ना, अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपने शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते, तो आप सहयोगी बनो, किसे सिर्फ सिक्ख्या से नहीं, आजकल सिक्ख्या सिवाय प्यार या शुभावना के कोई नहीं सुन सकता, ये तो फाइनल।

0: Jackie sat sjukbavna remtel je sej kapkat Brahma bab ko deka malam bhi hota ke aaj is bacche ne bhul ki hai malum hai lekin usi bacche ko sikhya bhi tarike se yukti se dega lekin phir usko bhi bahut प्यार भी करेगा जिससे वो समझ जाते थे तो पापा का प्यार है और प्यार में गलती महसूस था कि शक्ति उसमें आ जाए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात को विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है जो ज्यादा बोलते हैं
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

करने के पहले सोचो, क्या ये संकल्प ब्रह्मा बाप का है? अगर है तो प्रैक्टिकल करो, घर के पीछे नहीं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

श्रेष्ठ वाणी।

Вот, волки река.

Sa

श्रेष्ठ कर्म के कलम से कीजिए। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य Sheep.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज क्या संकल्प किया, बनना ही है ब्रह्मा बाप समान, बनना ही है, बनना है नहीं बनना ही है। कोई भी बातें है, बात के बजाय बाप को आगे।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

और जब आप सुन

0: जो मेरा कहने में मेरा हो जाते थे, उनकी शिकल, उनका उमंग बहुत अच्छा दिखाई देता था, इसलिए डबल विदेशों को हम और बाप दादा कहते थे कि डबल विदेशी मधुबन का श्रृंगार। तो अभी भी डबल विदेशी जो कार्य भी मधुबन का होता है वो बहुत रुचि से करते हैं, इसलिए हमारी भी डबल विदेशों को बहुत बहुत बहुत बहुत याद प्यार देना और कहना सदा बाप में के दिल में आप हो और आपके दिल में बाप है, ये वरदान हमारी तरफ से देना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Thank you. बीमारी फिर से आ जाती। ऐसी दवाई तो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो, वो है मेडिटेशन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक बाप दादा को अल्लापेलापन नहीं अच्छा लगता, और दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा। कुछ भी हो जाए दिल छोटी दिल होती है, और दिल खुश बड़ी दिल होती है। दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना। उमंग उत्साह में सदा उड़ती।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Savoir.

करना, तब तो याद करते हो। तो बाप बाबा बच्चे

इसमें अटेंशन देना है, इसके हाथ उठाओ। सुबह को उठते ही ये बाबा शब्द याद कर, पाप देख

वह शब्द बोलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये बोलना नहीं,

از بابا شفت یاد رکھنا اگر کبھی موڈ

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्यों कि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाएं हैं। देखो कोई रंग बड़ा की तो है ना, ये तो एक कलयुग के लास्ट का ये फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना तो एक कलयुग का

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ, अनुभव कराओ। अनुभव पक्का बनाती है, एक ही समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम और हर एक सेंटर। अनुभव क्या किया वो रिजल्ट लिखे, चाहे तीन दिन का प्रोग्राम कराओ चाहे एक दिन का कराओ, लेकिन इकट्ठा चारों और जैसे थर्ड संडे सभी जगह रखते हो ना, अभी अनुभव कराने का प्रोग्राम चारों और एक समय, लक्ष्य लक्ष्य एक, समय एक और चारों ओर। देश वाले भी समझेंगे कि ये विश्व में पीस के लिए इतना इकट्ठा एक समय प्रोग्राम रखे। लक्ष्य रखो अनुभव बनाने का, सब सुन के चले नहीं जाए, कुछ अनुभव करके। आप लोग भी बाप के बने कैसे, कुछ ना कुछ अनुभव किया, चाहे प्यार का चाहे टोली खा के भी प्यार का अनुभव किया, बहनों के व्यवहार का अनुभव किया, बहनों के मुस्कुराने का आचार करने का अनुभव किया, कुछ ना कुछ अनुभव किया तभी बने हो। तो ऐसे अनुभवी बनाओ, अभी अखंड सेवा करो, बहुत सेवा रही।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा है कि जो भी विंग्स है, चाहे ट्रांसपोर्ट का है, चाहे धार्मिक है, लेकिन जब प्रोग्राम करते हैं, कनेक्शन में आते हैं, उनसे लगातार कनेक्शन में रखते रहे, वो नहीं होता। जब फिर प्रोग्राम होगा तब पत्र भेजेंगे, निमंत्रण भेजेंगे, फिर से आओ, लेकिन समय पर तो समय बाप दादा ने एक फॉरेन का समाचार सुना है कि एक लाइफ टाइम्स का जो प्रोग्राम करते हैं उसमें लगातार हर सप्ताह जो भी आते हैं और अच्छा लगता है, जिज्ञासा उठती है, कनेक्शन होता है, लेकिन पक्के रिलेशन में लाने के लिए उनकी पीठ नहीं करते। 6 साल के बाद वो याद आ गया तो आ गया, कनेक्शन हो गया तो हो गया, लेकिन हर एक की एड्रेस पर उनको कुछ न कुछ सप्ताह में बेचना चाहिए, जिससे उनकी पालना होती रहे। बिना पालना के फिर कभी नहीं भरा होता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

cheval.

cursing at the end. Hum. Shiva Vanshi. Brahma.

Nasıl sıram?

Nossa.

bimbo.

कोई टीचर देगा। जो रोज सवेरे सवेरे दौड़ते

Escuchándome.

Sí.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अपोजिशन तो होगी क्योंकि अपोजिशन ही पोजिशन तक पहुंचाती है। देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई हुई ना, और पोजीशन किसने नंबर वन पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर पापा शब्द नहीं निकलता तो क्या

0: जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आज के सारे दिन में।

Push.

मुझे छोड़ना भी है और कुछ नया। कौन धारण करना है सोचो।

कुछ

Olivier.

prochaine.

Johnson.

Giorgio Nettie.

उसके लिए बाप दादा फिशिंग

You've bumped.

beef.

agar sarasa swapan matra viyo. Upset.

संकल्प आज का अगर किया तो आज का दृढ़ संकल्प करने में आप हर एक को एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। Son.

Japonesa.

Tschüss.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कई बच्चे ओले ना देते हैं कि कभी कभी जिस शक्ति नहीं आती है उसका कारण है कि आप अपने मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सेट नहीं होते। इसीलिए बिना सीट के ऑर्डर कोई नहीं मानता, तो सदा अपने सीट पर सेट रहो। कभी फेस्ट तार्स चलते हैं, वह कभी टेंशन।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना, और बाप दादा ने पहले ही सुना है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी और साथ में रोज का हाल चाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वो स्मृति सहयोग देती। धर्म राजपुरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया राजपुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में अपने को जो बाप की आश है कि चेहरा दिखाई दे, झलक दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके देखो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: में बाप दादा हर हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठाओ, हाथ उठाने में तो ठीक, तो क्या करना, अच्छे एक दो को अटेंशन दिलाते रहना, क्या करना, रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले सारे दिन का पोता मेल देना, अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वो पोता मेल देके और अपने पोते करके गुड नाइट करना, बाप से भी और बाप की याद में आप भी सो जाना, आपकी नींद बहुत अच्छी हो, पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना, तो आपको बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाए।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा धन माना, धन जो भी है मेरा

has manapi amanat to yut kismikarte ho mera man pareshan hai mere man mein firat sankalpati mera man विचलित होता है जब मेरा है नहीं अमानत है। फिर अमानत में मेरा समझ के यूज करना, ये अमानत में ख्यानत नहीं है। माया से है मैं और मेरा, तो तन भी आपका नहीं तो देव मन का मैं कहां से आया। मन भी आपका नहीं तो मेरा मेरा कहां से आया। या मेरा है, बाप का है, पक्का है कि कहना है करना नहीं। कहना बाप का और मानना मेरा, सिर्फ पहला फायदा याद करो करना बॉडी कॉन्शियस की you

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सोचते

0: चलन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप परमाणुओं के ऊपर परमात्मा
1: I'm sick.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रति भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए

भगवान की दृष्टि से देखो, हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है। मेरा पापा तो कहते हैं, और सम्मान में रहो और सम्मान दो, एकता लास्ट नंबर पे एक पापा का बच्चा, पापा को सामने लाओ, उसके गलती को सामने नहीं। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख गया है, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी संगठन अच्छा, ब्राह्मण जीवन कितना से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा लिया है, लेकिन अभी कहाँ कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गए। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संघ दोष में बहुत दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन संघ का रंग, बाप के संघ का रंग कम लगा है, इसीलिए वो रंग

0: वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संघ दोष पे नहीं हो, आज होली है ना, तो जो संघ दोष में आ जाती है टेम्पटेशन है, संघ दोष पे नहीं हो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सो रखे हो

सभी बच्चों

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: उससे ज्यादा

Jessica.

cose piar toca. Sick.

Sayong.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: मनसा से भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ा सकते संबंध संपर्क मनसा की सेवा अभी कम है, लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो अंत में कोई रह नहीं जाएगा। कभी भी अगर फुर्सत मिलती हो जैसे ब्रह्मा बाप ने आप सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया, घर बैठे हिम्मत दी और चल पड़े, ऐसे आप भी फरिश्ते रूप से मनसा सेवा कर सकते। फरिश्ता बन के ये अनुभव भी बढ़ाते चलो, क्योंकि दुख की लहर जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ता जाता है, तेज लहरें बीच बीच में आ जाती है ना, ऐसे अभी जितना समय बढ़ता जाएगा तो बीच बीच में भी ऐसी लहर दुख की अशांति की बीच बीच में भी बढ़ती रहेगी। कोई कारण ऐसे बनेंगे जो दुख की लहर पड़ेंगे, इसलिए औरों को तैयार करो वाचा के लिए, लेकिन फाउंडेशन पक्का हो, अपना प्रभाव डालने वाले नहीं हो, रियल ज्ञान का प्रभाव रखने। कभी कभी कभी ब्राह्मण बच्चे भी अपना प्रभाव रखने लगते, बाप के तरफ कोई भी सेवा में बाप के तरफ आकर्षित पर्सनल नहीं, अगर पर्सनल अपने पर प्रभावित करते तो उसका पुण्य नहीं बनता। अच्छा,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल, तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो, टाइम पर सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना। एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब आप

स्टेज पर स्थित हो जाओ। पाप सब

Peace.

Awesome.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी बंधन में जाना न जाना अनुभव नहीं रहा, जाना है आवश्यक है तो शरीर भी साथ देगा। जो चाहते हैं उनको दे रहा है, आपको दे रहा है ना, मदद दे रहा है ना। जहाँ आवश्यकता है वहाँ मदद मिलेगी।
4: बहुत लोगों का निमंत्रण होता है पीछे तो सब कहेंगे नहीं आया।
3: उसमें भी जब देखो हो सकता है तो ना नहीं कर चल सकता है शरीर। कभी तो एकदम खराब होता है ना, वो बात दूसरी, बाकी चल सकता है तो सेवा से खुशी होती। ये भी दवाई है, खुश होते हैं तो सबकी खुशी की खुराक मिलती।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे ये कॉल ऑफ टाइम में या पीस ऑफ माइंड में थोड़ा थोड़ा अनुभव ज्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे उसके पीट करके कुछ न कुछ अनुभव करे, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। और अनुभव ऐसी चीज है जो न चाहते हुए भी
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ See.

0: Pensati. Apri. Master. Good job.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अब दादा सभी बच्चों से यही चाहते समान बनने का दिखाओ, सदा संकल्प में समारोह मनाओ। क्योंकि व्यर्त समृद्ध बनने नहीं देंगे, और जब तक निमित्त बने हुए बच्चे सदा समृद्ध नहीं बने, तो विश्व की आत्माओं को समृद्धि कैसे दिलाएं? सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों के भिखारी बन चुके, ऐसे भिखारी आत्माओं को ये समृद्ध आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो,
2: बच्चे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, पता है क्या देखा? कमी किस बात की है तो यही दिखाई दिया कि एक सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता। बाप दादा ने सुनाया कि एक लास्ट टाइम की लास्ट

दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाता, तो फुल स्टॉप नहीं लगता, लेकिन कमा आश्चर्य की निशानी। और क्यों क्वेश्चन कि क्यों लग जाती, तो इसको चेक करना, अगर फुल स्टॉप sleep।

0: to stop. Seeker me. Lagane ka. Bar bar. Abhyas karo. Abhi. Fast divar pusharat karo. Abhi dhila dhala pusharat. सफलता नहीं दिला सकेगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं। अभी फिर भी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा आपका साथी है, जहां भी मुश्किल आवे उस दिल से कहना बाबा मेरा, बाबा मेरा साथी, आ जाओ मदद कर। बाबा भी बंदा हुआ, सिर्फ दिल से कहना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सत्युग में या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकते।

0: c'est morte. Et puis, soukiam, bandanayo, essai, divano morte, panero, va à me banning.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
2: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

सफलता स्वरूप ही सफलता है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पवित्र संकल्प करो, संस्कार कट करो, स्वभाव का मत भेदो। तीसरी बात कमजोर होने की होती है, कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर। लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया

0: कोयला नहीं सुनता क्योंकि बाप बाप के साथ कह रहे हैं झूठ है तो झूठ को झूठी कर दो ना पढ़ाते क्यों तो आज बाप को बहाने बाजी अच्छी
1: आप सुन रहे हैं।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल की मुरलियां

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आप भी आजकल आप बच्चों को यही शरारत देते हैं साधारण है। मैं शरीर

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

钱。

Peace, peace.

लक्ष्य रख।

Oh no, Corby.

0: चाय सेवा केंद्र चाय स्वयं कहाँ भी रहते स्वयं को निर्विघ्न
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

बातें नहीं सोचो, ये कैसे होगा, ये क्या होगा, आप अपने को। बच्चे को ऐसा योग्य बच्चा

Kids.

tiempo.

Tiens.

Sí.

ಶಕ್ತಿ. Your son.

Carson Jett. Ты каешь.

ちゃん。परेशान नहीं होता।

0: 到人家给气氛安不够的没那得那个你不得没人家安不够的
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहां है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करने चाहते। अनुभव कराना अनुभवी ही करा सकता है और अनुभवी सामना करने की शक्ति। चार ही सब्जेक्ट में समृद्धि स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी सभी बच्चों का

Jane.

口。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Percentage yoga keys.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: योग में अमृत वेले ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग अशांति हलचल बढ़ती है। इसलिए अपने आप एक रखिए, एक परिवार। उसके परमान जब एक परिवार है तो अशांत आत्माओं को कुछ तो चली देंगे। I am.

0: अटेंशन खिंचवा रही है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना, तो सोचो बाप से

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, अभी समय के समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है चाहे बड़े सोट में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक। Some

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो सेवा तो की, लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं साथी और वायुमंडल जन सपे संतुष्ट के वाइब्रेशन में सेवा की सफलता की तीन बातें विशेष सुनाई थी, याद होंगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल वाणी। भाव भावना और स्वभाव, ये सभी साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिनों की सेवा की वो भी आगे बढ़ते जाए। निमित्त भाव वाले भाव के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो भाव के नजदीक इतने नहीं आए। जब भी सेवा करते हो तो ये चेक करो कि भाव भावना और स्वभाव ठीक रहा। और आजकल

ये चेक करूं कि साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं, स्वयं से संतुष्ट रहो, निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा, करना ही हिसाब किताब में जमाओ और उन्हों को भी संदेश मिल गया तो टाइम सभी को आना ही है, इसलिए और कोई है क्या जैसे योग है और सदा रहेगा, बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है। अगर कोई आया नहीं तो सीजन का फल है, सीजन आएंगे, दिल शिकस्त नहीं हो, क्योंकि श्रीमत को तो मानना है, श्रीमत परमान कार्य किया, इसीलिए श्रीमत को मानना ये भी एक सफलता है। पढ़ते जाओ करते जाओ और ये पश्चाताप करके आपके पाँव पर पड़ी जो आपने कहा हमने नहीं माना, यही आप दिव्या बनेंगे, आपके पाँव पर पड़ेंगे, तभी तो भक्ति में भी पाँव पड़ेंगे, तो वो टाइम भी आना है जो सब आपके पाँव पड़ेंगे जो आपने कितना अच्छा हमारा किया।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कौन सी तीन चीजें चंचल

حسن.

मेरा नहीं कह सकते। ये पास्ट जीवन के संस्कार शूद्र जीवन के संस्कार।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: देखो फायदा तो क्या है, अच्छा है मुबारक हो, लेकिन क्या है, फायदे का फायदा नहीं उठाते हो, फायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फायदा उठाने के एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज करो, फायदे को रोज रिवाइज करो। क्या वायदा किया? अमृत वेले मिलने के बाद फायदा और फायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

छोटी छोटी एरिया वाले भी आपको लेना दे सकते। हमारा बाप आया, आपको मालूम पड़ा हमारा बाप है, क्योंकि सबका बाप है ना। तो आपने क्यों नहीं बताया? इसलिए चेक करो अपने एरिया के चारों ओर, संदेश छोटी एरिया, लेकिन है उस एरिया की है तो बचे ना। किसी को भी बेच के छोटे को भेजो, लेकिन वंचित नहीं रह जाए। क्योंकि समय अचानक आना है, पता के नहीं आएगा। अपना चारों संदेश देने का कर्तव्य अवश्य देखो। मानो आपकी एरिया में एरिया को चेक करना, चाहे छोटे ही गली है, साधारण लोग है, लेकिन बच्चा तो है ना, बाप आया है ये पता तो होना चाहिए। रीति से कर
pecho. Dijeron, hola. Pena.

0: के अपने एरिया को चेक करो रायगढ़ के पड़ोसी से। उस द्वारा कराओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

funny.

Chama creia. Somebody.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिए। इस विमान में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा बस चलाना आते है ना विमान। जब भी कुछ हो तूफान में पहुंच जाओ। भक्ति मार्ग में चार धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं, और मधुबन में भी चार धाम है तो चार धाम किए। पांडव भवन में देख चार धाम है, जो भी आते हो पांडव भवन तो जाते हो ना। एक शांति स्तंभ महा धाम, दूसरा बाप दादा का कमरा, ये सने का धाम, और तीसरा झुपड़ी, ये सने

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप सबकी दादी निमित्त बने ना, कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित्त पालना के ऑटोमेटिक याद निकलती। तो जैसे दादी ने बाप दादा की तो बात शुरू, लेकिन दादी तो आप जैसे ही थी, लेकिन करके दिखाए। सबसे बड़ा पेपर ऐसे वायुमंडल अचानक और इतनी हिम्मत रखना और सभी को मददगार बनाना, ये तो कमाल की। भले साथ दिया लेकिन निमित्त की विशेषता क्या रही? दिल साफ, मुराद हासिल, किसी की भी बात दिल में नहीं रही और अलबेलापन देखते भी उसको उमंग दिलाया। अलबेला है, छोड़ दो नहीं, हिम्मत दिलाई। वो सभी के दिल से निकलता है मेरी दादी।
2: भाइयों को बुला रहे
1: हैं, दिल से कहते हैं ना सभी मेरी दादी। इसलिए आप लोग भी ग्रुप बनाओ जो लक्ष्य रखे, दादी चलो बाप समान तो बनना ही है, लेकिन कम से कम दादी के समान पास ना दे। ग्रुप चाहिए एक, एक दो के साथी बन, ऐसा वर्तक के स्वरूप देख, फिर बाप दादा उस ग्रुप को विशेष गिफ्ट देंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: नहीं तो जय तो अच्छा।

0: die Kabak verbergen gewesen.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर कोई भी थोड़ी कित-कित हो तो अभी जाके पहले घर को ठीक करना, फिर विश्व की सेवा कर सके।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। तो सभी को जो भी सामने आए उसको हिम्मत उमंग उत्साह
2: कुछ

विश्व में

0: Vicky Bramar. Jo aprenc a bromar com a art. Com a Ari, se m'esté. On go ese. Se va me pesiren.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आजकल तो मेरे में एरिया का चमेला ज्यादा हो गया। मेरी एरिया विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी देश का अपमान, देश का मान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देश का अपमान ये बहुत सूखम है। मेरा इसको ही देश का अपमान कहा जाता। मेरा होगा ना वहां अपमान जरूर हो, चाहे अपनी विशेषता प्रत हो। मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, ये सब मेरा पन, ये प्रभु प्रसाद है मेरा दी। प्रसाद को मेरा मानना ये देवान अपमान, ये अपमान छोड़ना ही संपन्न बनना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्रह्मांड सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, योग बाप को सब प्रकार के संकल्प वा जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का भोज वो दे दिया है ना, भोज दिया है या थोड़ा सा रह गए, क्योंकि थोड़ा भी भोज फरिश्ता बनने नहीं देंगे। और जब पाप आए हैं बच्चों का भोज लेने के लिए, तो भोज देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं भोज दे दिया है वो हाथ उठाओ, दे दिया है देखना सोच के हाथ उठाना, भोज दे दिया है, दे दिया है। अच्छा दे दिया मुबारक हो, दे दिया है तो बहुत मुबारक हो, और जिन्होंने नहीं दिया है वो किस लिए रखा है? भोज से प्रीत है क्या? भोज अच्छा लगता है? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, तो बोझ का फिक्र होता है ना, बोझ लेने के लिए बाप आए, क्योंकि तेसर जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते बच्चे सभी

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

और सभी संकल्पों से दूर कर एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हैं, करेंगे एक सेकंड में मैं बिंदु हूं कोई संकल्प

Síganme.

सफलता मिली। क्योंकि यहां तो वायुमंडल भी है लेकिन अपने अपने स्थान में रहते। सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। ये अभ्यास कर क्योंकि बाप दादा ने बता दिए जितना आगे चलते जाएंगे उतना ये एक सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने आप को ही चेक करना और अपने अपने स्थान पे रिपोर्ट टीचर को लिख के देना। फिर टीचर्स द्वारा चाहे यहाँ है या नहीं भी है सभी के क्लासेस में ये होमवर्क है। इसकी रिजल्ट बाप दादा के पास आएंगी तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप इस सफल हुए उससे पता पड़ेगा कि आप

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भगत
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा यही चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष जैसी समझे मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो जिससे भी मिलो चाहे आपस संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मना नहीं होते, मणि होते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: शिवा का रोड़े आप चले, शिवा तो बहुत करती है, दिन रात बिजी भी रहती है, प्लेट भी बहुत अच्छी अच्छी बनाती है, और सेवा भी फिरती भी बहुत अच्छी हो रही है। फिर भी मैं चारिटी का जमा का खाता कम क्यों, तो रुआरियान में ये निकला सेवा तो सब कर रही है, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रही, फिर कारण क्या है? सेवा की मेहनत और समय लगाया, लेकिन दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता चाहे साथी चाहे जिनों की सेवा की, संतुष्टता अनुभव करे, बहुत अच्छा कह के चले जाए, नहीं दिल में संतुष्ट।

0: स्वाकि संतुष्टा। अपने को कुछ करने की संतुष्टा नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ नहीं। इसलिए जमा का खाता कम हो जाता, जमा के खाते की चाबी है बहुत सहज डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो लेकिन डायमंड चाबी जमा की है। सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, और हर एक आत्मा के प्रति जय साथी, जय सेवा जिस आत्मा की करते हो, दोनों में निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ सने बाधाने जगत मामा को दिखाया इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है, जमा खाता जमा हो जाता, जैसे टिक टिक टिक टिक जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगदम्बा बड़ी खुश हो रही थी,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बन जाऊंगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, बीच से तो है, विश्व का राज करना है ना, और राज में उस संबंध में आना ही होगा, इसलिए

नहीं मिलती, अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी रीत आकार समान संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो होना, सेवा से दुआएं मिलती है तो स्वयं भी हल्का रहेगा। और जिसके संपर्क में आए इसी भी नहीं।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने है और बनना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के मास्टर

Yeah,

0: заметяй.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर को नेचर दौरे की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का सनई और सर्व बातों में संबंध में सफल मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इसी नेचर अल्लाह पहले नेचर नहीं अल्लाह पहला बना अलग चीज है। इसी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय जैसा व्यक्ति जैसा सर्कमस्टेंस उसको परखते हुए अपने को इसी कर देवे। इसी अर्थात मिलनसार टाइट नेचर बहुत तो अच्छा ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन तो मच नहीं। और समय पर जब समय ऐसा है उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वो कुरक के बजाय उनकी विशेषता नहीं उस समय लगती अपने को मोल्ड कर सके मिलनसार हो सके छोटा हो बड़ा हो बड़े से बड़ेपन में चल सके छोटे से छोटे पद में चल सके साथियों में साथी बन के चल सके बड़ों से रिगार्ड से चल सके बोल्ड कर सके। इजी शरीर भी इजी रखते है ना तो बोल्ड जाते है जहाँ भी बोल्ड और टाइट होगा तो बोल्ड नहीं सके अल्लाह बेला भी नहीं। इसी है तो चाहता इसी हो जाए अल्लाह बेला हो जाए नहीं बाप दादा ने कहा ना इसी हो जाओ इसलिए इसी हो गए ऐसे नहीं करना। इसी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सदा

Chết.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: इस वर्ष की ये लास्ट मीटिंग है, लेकिन दूसरे

तो कार्य करने। एक तो अपने सेवा स्थान को सदा

विशेष कमजोरी हो। आप तो जानते हो ना अपने कमजोरी को। फोक

say. Fiera Sakalabo. Say Grodo. Chota chota Grod bhi. जैसे हाथ उठाने में एवर रेडी हो गए ना, ऐसे ही त्याग करने में भी एवर रेडी. दूसरी सीजन कौन सी सभा होगी? निर्विघ्न पाप के दिल पसंद पसंद.

Skip.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सकते हैं ना, और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है, फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है, आपकी कमजोरी बिना बिना माया के रूप बन जाती, बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में खुश निमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संबंधित।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

姐。Mais après, ça

yok.

आपका जन्म से तक

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा किसानों के मालिक बच्चों के रही।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Come on. हिंसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्रह्म जीवन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब कंबाइन सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइन, फिर अकेले क्यों बन जाते अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्ति

0: और समय सहयोगी शिव बाप परम धाम से आए क्यों है, किस लिए आए? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए। देखो ब्रह्मा बाप भी
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

欠你。

समाप्त कर सकती है।

0: रतन बनाने चाहिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के

Choco. Me va.

0: अब समर्थ नहीं। समर्थ के साथ साथ सर्वसमर्थ्या बच्चों को वरदान में प्राप्त।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: wishes. Attention, Dilatia. Kisrav, ek vacha ki seva nahi. Seva karte ho, to ek hi samay par teen sevae ikatthi karo. Mansa dwara sakash do, vacha dwara kyan do, aur karpana artat apane samparak dwara sambandh dwara chere dwara aisi seva karo jo uska bhi prabhav saath saath seva mein ho. Ek samay mein teen seva ikatthi karo. Kyunki abhi atmaye seva ke liye chahti hai kuch farak ho, kuch badalna chahiye. एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कल्पना अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ. एक ही समय तीन सेवा. तो अभी अटेंशन प्लीज. कभी कभी नहीं.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक स्वयं का स्वमान, दूसरा समय का। मैं तो आप साधारण नहीं हो, पूर्वजो समझो।

0: semana mera baba aur baap ne bhi mana mera bachcha. Wo sabhi zimmewar hai. Kyun? Jab se aap kehte ho
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद.

Ja.

मुक्ति धाम में जाना है।

0: Ce l-are e moctitul. Bapta dapne. Raite ensco. Ketie. Rem karo.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Dick.

श्रेष्ठ प्रलंबित जमा का खाता दूसरा।

Israel.

обещание. So

pensarva cosa noco. Siamo carnegie. Siamo bien.

चाबी का

Witness.

Chamito Hernández.

सभी किसानों को वृद्धि की विधि है, दृष्टि

si mi cariño me y es sangre.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? कितने सर जन्म की आदत है बोझ संभालने की। बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं होना, मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है। शक्तियां मजबूत हो या मजबूर, मजबूत है ना। आगे बैठी हुई क्या है, मजबूत। Revise.

Action.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोग जोड़ने में तो जय भाई जय बहने, जो बीने में थे विशेष परिवार निर्विघ्न हो, उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के प्रति भी करते हो, लेकिन खास परिवार के उन्नति के लिए और यज्ञ की कारोबार आगे आगे बढ़ते जाए, गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना है। कोई भी सरकमटेंस वो सभी के योग से, सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी हो।
2: यूथ विंग के लिए भी 1 करोड़ की एप्लीकेशन दिया हुआ है।
1: अच्छा है, बड़ी दिल रखो, आता जाएगा, सोचेंगे ना ये करूं नहीं करूं नहीं करूं करूं, मैं टाइम नहीं दे। आजकल समय है, अगर आप सभी शुभ भावना एक संकल्प रखो, होना ही है, हो सकता है। ये वरदान है, दिल बड़ी और कायदे सिर भी और दिल बड़ी भी, सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़ी रख करके फिर कायदा को। सभी का एक ही संकल्प हो, होना है, क्यों क्या नहीं होना ही। तो इस विधि से सब सहज होता है।
2: सोनीपत की भी 2 दिन के बाद डेट है कोर्ट में, भी हो जाए।
1: बस 10 मिनट आप सब निमित्त बने हुई आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है, सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता है, सिर्फ हो जाएगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: So

sick.

Oscar.

çok.

0: समर्पण दामहीन।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बाप दादा समझते हैं आज के इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी।

उसमें फर्क पड़ जाता। कारण क्या? एक ही बात बाप दादा देखते हैं रिजल्ट में, दूसरे के तरफ

परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तुझे परिवर्तन से स्व परिवर्तन बदली करे, बदली करे, नहीं करे नहीं आएंगे। जब बाप ने

0: सिमरना पड़े, मैं पन सिमरना, शरीर से नहीं मरना, शरीर से नहीं मरना, मैं पन से मरना है। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, ये मैं पन से
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ऐसे वो माइक वाला जिसकी आवाज पे ताकत हो, माइक उसको कहा जाता है। चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज में ताकत नहीं तो माइक नहीं। माइक वो जिसकी आवाज में ताकत हो, ऐसा माइक तैयार करो किसी भी रीति से बेहतर को
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

कैसे बना? बड़ी सभा में अपना सुनावे, छोटे मोटे नहीं, लेकिन ऐसा हो जिसका प्रभाव जनता पर पड़े, जैसे हर वर्ग की सेवा करते हो ना, तो ऐसे भी कोई तैयार करो, ऐसे ही

Yes, it's all.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yeah.
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

जैसे बीच बीच में 5 मिनट बिल्कुल अच्छा।

Sabika attention.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया, बेहद का फेरा, आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बहुत बेचारे दुखी है, बहुत परेशान। तो अभी रैम दिल बनो, रैम की लहर, बेहद की फैराग, फिरती द्वारा फैलो। अभी सभी साथ ऊंचे थे, ऊंचे परम धाम में बैठ, बाप के साथ ये सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि तो वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते हैं ना? तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ, वहां से ये बेहद की रैम का वायुमंडल

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।